యా కషపితి చిసుమ్రో ఒకటి చిసు ఒకటి జో కదా సమయ बिल्कुल बिल्कुल दास है अभी सिद्धार्थ में तो सिंह गई खगे खोरे माता गोरे माता सिंह गई जाय जाय आई जा डेरा मंद ना खाम मल में से जागल दी अच्छा जी मंगटलो गरीबाना नहीं हुआ है ना मंगटलो गरीबाना नहीं एनीवे कॉल तो गुरु सर कॉल को उनके सोख दे और तो कम से दे अस्सलाम वालेकुम जी السلام علیکم جناب علی سکھ دکم سے نا متی اللہ تسنگ ٹک ٹاک خیر خیر دے سا دعا گانے دیا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

होल सेल तर ला सके। द देना अलावा एबी ट्रेडर्स ना डोसा कोला कोल्ड ड्रिंक और स्वीट सामान हम होल सेल रेट तर ला सके। प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला रबते नंबर दे 0342 0098।

0: 1857 और बल नंबर दे 0309-5029-244। कब शपे नुम याद सताए दबाइए सुर दे और कार्ये स्पिन दे कब शपे।
1: आसान रोजगार द पारा शॉर्ट कोर्सेज मेडिकल फील्ड के शॉर्ट कोर्सेज कबूल द पारा बा इतिमादा इदारा वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम वकाला कोर्सेज इज द कबूलो बेहतरीन मौका। हेल्थ टेक्नीशियन, सर्जिकल टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन अलकानो औजिनको द पारा दाखिले शुरू दी दे सरसरा कैटेगरी बी फार्मेसी स्टोर लाइसेंस दबारा होम दाखिली शुरू दी। वर्टिक्स कॉलेज बटग्राम मेडिकल फैकल्टी द खैबर पख्तूनख्वाना इलाहाक शिविदा हेल्थ फाउंडेशन के पी के नहुम रजिस्टर दा DHQ अस्पताल बटग्राम के बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग होम दर कवले कीगी। मजीद मालूमात दबारा वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम तशरीफ रावड़े पते याद सहते वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिलमुकाबिल अलफकीर शॉपिंग मॉल नज़्द PSO पेट्रोल पंप बटग्राम MD रहमुल्ला यूसुफ जई सिपसरा पदी नंबर हम राबिता कौली शे 0900

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम के चिबस्तासो दहर ना इलाज मरज इलाज डेर पतसलई सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी और बादी बवासीर अरकुल निसा बे औलादी दनारीनाओ जनानाओ पटे मसले दमला दर्द दमला परक और हडू की वहर उड़े दल दजरुनो रगुना बंदे दल दमेदे मसले फालज जड़े विख्तगोर से दल या पमख बांधे विख्तरा खतल नूर योशमेर मसले द डेटोलो मरजुन इलाज पदरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटाग्राम के डेर पतसलई सरा कवलेशी कचरता स्टासु बाशुमान तास किस्म मसलेवी लकद उमर सरसम नगर जेदल दखपो लासुनो कमजोरतिया दस्तरगु मसले पगुनो द्रने दल पोज के वह के दल या नोर से कमजोरतिया वी नुतासु खपल माशुमान दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटाग्राम तारावस्तरे से दरमान होम्योपैथिक सेंटर टोल हफ्ता कोलाउई चिपके जब हवर दुआ मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टरान मौजूद हुई दरमान होम्योपैथिक सेंटर ता डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से लपे हवरा तशरीफ रौड़ी द हफ्ते रुम्बई सलोर रजी पीर मंगल बुध जुमरात यानी सलोरमा पिनजमा शपगमा औजारत द सहर अतोना माजीगर सलोर बजो पोरी मौजूद हुई दाशान द हफ्ते आखिरी द्रिव रजी जुमा हफ्ता और इतवार द पेहावर बल काबिल डॉक्टर डॉक्टर नजमुल हसन से द सहर अतोना माजीगर तरसलोर बजू पूरी मौजूद हुई दोनों मालूम दफारा फदे नंबर राबिता कवले शई 0331-47-48-317 0331-47-48-317 पतयार।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीरु योशमार कलूना तालीम पर मैदान की फुल खिदमत तरसर कभी नकाम बची फुल बची गणी दौरे हाजिर तालीम वरकवल सरा सरा और माशुमारों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खुसूसी तवज्जो साथी कमचे तालीम पर मैदान के और बटाग्राम की लतीरु द्रु कालूना टॉप पोजिशन होल्डर इदारा दा अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम जमुन खुसूसियात द दौरे जदीद तालीम वरकवल और माशुमानों की इस्लामी अकदार रावस्तल जो सफा सुथरा और तालीमी माहौल वरकवन के इदारा द स्कूल फुल ट्रांसपोर्ट और द सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम कंप्यूटर लैब और द लोबो फुल मैदान खुमश्ता नो दखल औलाद मुस्तकबिल रोखा नकड़े मुंगसरा द प्ले ग्रुप नवाला तर नाइन्थ क्लास पूरी द तुलबो तालिबात पर महदूद सीटों बांधे दाखिले शुरू दी नो पता याद साथे अलहम इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल निस्त वावडा ऑफिस गेरवली बाजार बटाग्राम मजीद द मालूमात द पारा द टेलीफोन शमेरदा 0997-310-444 मोबाइल नंबर दी 0345-94-72-137।

पाकिस्तान खिलाफ बांग्लादेश टीम अवलिनी इनिंग्स के योगट स्कोर करे दे डके के लुबिदुन के टेस्ट मैच के पदवायम ओवरस बांग्लादेश टोल टीम द्रेसवा गंश में रंजुल जुड़ करी दी बांग्लादेश लाड़ा खान नजमुल हसन शांतु यो सलियो मोमिन हक यो नवी मुशफिकुर रहीम यो अविया रंजुना जुड़कड़ी दी पाकिस्तान लाड़ा खा मोहम्मद अब्बास पिंजुम शहीन अफरीदी द्रे मुहसिन अली और नुमान अली यो युलबगाड़े आउट करे दे और वो शरीकऊ द मौसम हाल मौसमियातो मुहकमे तरमखत 13 से 40 घंटों के करक बनू लकी मरवत और टांग खावशा सीमो के ज्यात न ज्यात दर्जा हरारत ओवदेश और कम न कम 25 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शवे पहावा के दनमय तनसुब 14% और देवा रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड करे शवे दे मौसमियातो मुहकमे तरमखत 13 से 40 घंटों के करक बनू लकी मरवत और टांग खावशा सीमो के मौसम खुशको मौसमियातो मुहकमे तरमखत सबाबा करक लकी मरवत औटांग ख्वाहशा सीमो के पासमान वृजीवी वाले बलखा सबाबा करक बनू लकी मरवत औटांग के अनमर सरा शहर 6 मिनट दपासा 5 बजे से रही और माखाम 7 मिनट दपासा 9 बजे बा डूबेगी दाऊ द रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क मुहिम खबरना नोरा मुहिम खबरना और दलो दपारा रेडियो अमन 88.4 करक टांग और बटाग्राम फेसबुक पेज लाइक के उस माता द न्यूज टीम सरा राका इजाजत दलो अल्लाह पामान।